दार युग की पोरा पुरुषान के मर सही कोरा दुनिया भी बफा दिग चेर बेरा जख्मी अरे